और अपने पुत्रों भेजद खड़क सिंह को नहीं आन दिता। जदों भी कदे पता लगना भी इथे खड़क सिंह भेजना पैना तो खड़क सिंह भेजदा किसी मुहिम के उत्ते या तो उदे नाल चंगा असला नहीं भेजदा, चंगी अफौजा नहीं भेजदा, चंगा प्रबंध नहीं भेजदा। हर थां दे उत्ते जिन्नी बारी भी भेजिया खड़क सिंह हार के आया। उन्हें महाराजा रणजीत सिंह दी नजरां विच अगर अत दा नलायक पुत है तो तेरा खड़क सिंह है। और अपने पुत नू इतना कमजोरी बना दिता उन्हें। महाराजा रणजीत सिंह सौण लग्या ओह ध्यान सिंह डोगरे दे पुत नू प्यार करके सौंदा है, बचदी कहिंदा उन्हों। इना भी अनर्थ नहीं होना चाहिए भाई एक प्यो पुत के रिश्ते कोई चीजा खड़ जाए। और याद रखने योग बात है यह खड़क सिंह है जेड़ा अपने पुत निहाल सिंह नू तड़फदा मर गया, इनू जेल विच बंद करवा दिता सी, तड़फदा मर गया भी एक बारी मैनू नौ निहाल सिंह नाल मिला दियो, लेकिन उन्हें मिलन नहीं दिता। खड़क जेड़ा ध्यान सिंह डोगरा सी खड़क सिंह नू आके कहिंदा सी भाई तेरा पुत तेरा मुंह नहीं वेखना चाहुंदा, चाहुंदा भी जिस दिन मेरे सामने आ गया पहला कतल मैं अपने प्यो दा करना है। ते दूजे पासे ओह नौ निहाल सिंह नू जाके कहिंदा सी भी तेरा बाप खड़क सिंह तेरे खून का इना प्यासा है, जिस दिन तू ओनू मिल गया उन्हें बिना गल करिया तेरा कतल करना है। मैं सिर्फ एक झलक तुहाडे सामने रखी है, यह कमजोरियां भी सन। उन्हें जब खड़क सिंह नू गद्दी देनी चाही महाराजा रणजीत सिंह ने, उदो सदा कौर ने इस गल का विरोध किया भी मैं तेरे नाल जिंद हूल के इन्हां हिस्से विच जंग दे मैदानां विच हिस्से लैंदी रही, ते अज तेरा वक्त आया गद्दी देण दा, ते तू मेरे पोतरियां नू पिछे करके ते खड़क सिंह नू गद्दी ते बिठाउण लगे जिहदा हक कोई नहीं बणदा। महाराजा रणजीत सिंह ने इस गल की परवाह ना की, खड़क सिंह नू गद्दी ते बिठाउण की कोशिश कर ली। उन्हें फिर बहाने नाल ना उदे दो दोतरे शेर सिंह ते तारा सिंह ना दोवें दोतरे शामिल होए ते ना ही ओ सदा कौर आई शामिल होई, ते पर उन्हें महाराजा रणजीत सिंह ने एक चाल खेडी, उन्हें सदा कौर नू बहाने नाल बुला लिया भी तू आ आके मेरे नाल गल कर, पहला आप जिवें कहेंगे उवें गल कर लांगे। जदों ओ आई ते उन्हें धोखे दे नाल उन्हें लाहौर दे किले विच बंद कर लिया। यह 1762 विच जम्मी सी, याद रखने योग बात है। 1832 दे विच ए लाहौर दी कैद विच ही अपने जीवन दा अंतला श्वास लेंदी, उत्थे रुक के मर जांदी है। यह भी महाराजा रणजीत सिंह की कमजोरी है, उन्हें नहीं सी ऐसा करना चाहिदा, क्यों कोई कोई गल दस सका रहा है तो जिवें किवें मैं ध्यान सिंह डोगरिया नूं खुश रख सकां। यह साडा दुखदाई पक्ष है। खैर जिहड़ी बेनती कर रहे असां 1839 तक महाराजा रणजीत सिंह रहिंदा, यह सारा इतिहास कदे वक्त मिलिया फिर तुहाडे नाल सांझा करांगा। अज मैं इत्थे तक ही लड़ी रोक के कुछ एक विचारां तुहाडे नाल इतिहासक होर सांझियां करनियां ने। सिख कौम दे विच इक खासियत रही है, रब जाने गुरु की कृपा सी जां की इहदे पिछोकड़ विच सी, जदों तक इहदे सिर ते मेहर भरिया हथ गुरु दा रहा है उदों तक किधरे भी गया तो जित्तां प्राप्त करदा रहा। जदों इह गुरु दे चरणां तों टुट के दूर हुंदा चला गया, शायद मेरा ख्याल तुहाडे दिमाग च ताजा होवेगा, मैं सिर्फ इशारा ही करना चाहुंदा है, इहनूं उदों नवाबियां मिलदियां ने इह ठोकरा मारदा, इहनूं धीआं दे डोले मिलदे ने इह ठोकरा मारदा। वक्त दा हाकम अहमद शाह अबदाली लहना सिंह वर्गियां नूं बदामां दीआं टोकरियां भर के भेजदा, पर इह चलियां दे मुकाबले विच उन्हां नूं जवाब देंदा भी मैनूं तेरे इन्हां किसे चीजां दी लोड़ नहीं है, असीं अपने घर दे चने खा के आनंद विच रह सकदे हां। इन्हां कोल कुछ भी नहीं सी हुंदा पर इह तद भी चढ़दी कला विच रहिंदे सन। फिर वक्त आया जदों 17 जनवरी नूं फिर दुबारे अहमद शाह अबदाली ने फिर दुबारे कोशिश की सिखां दे नाल संबंध पाउण दी भी किसे तरीके तुसीं मेरे नाल दोस्ती गंढ लो, दोस्ती दा हथ मैं तुहाडे नाल वधाउणा चाहुंदा पर मैं तुहाडे नाल ईरखा नहीं करनी चाहुंदा। लेकिन याद रखो जे सिखां ने उदों भी अबदाली नूं टिकाणा जवाब दिता सी।
ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ

0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سرون کر رہے ہاں پرسنگ श्री चमकौर साहब अचानक तुरकों ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला. इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है. महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नूं 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया. शाम दो घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे. रात नूं जाके घेरा पा लिया. गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं लियाउणा होर किसे नूं तंग नहीं करना. महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लियांदा रस्सियां नाल. अतः उस ब्राह्मण की स्त्री नूं भी नाल लेके आए है. आके महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच. आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं. प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु
0: साहेब जी. चौपाई तुरक सुबत जैसे जिस भाए जाए अचानक घेरो पाए.
1: सहज स्वभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो ये साडा राज है. मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता है मैं जो मर्जी करा. इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है. अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया.
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो.
1: क्योंकि हो सकता है प्रभु जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया. हो सकता वो इलाके दे च बदनाम होवे जबर खां पहला भी लोगों दियां धीआं भैणां नूं चुक लिया होवे. ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है. सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया.
0: जिनी को एक तुरंग चढ़ायो ए कुरीत फल सबन सुनायो.
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा पठान नूं भी खड़ा कर लिया. पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया बई असीं इहनूं ऐवें नहीं लैके जा रहे इहने आ कुकर्म कीता है इस करके असीं इहनूं पकड़ के लैके

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना सो इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे सो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत वाए कर भले फंदायो, पुन जननी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहलां मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदरे पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैणा करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: सिर पर शत्रु प्रबल विचारू।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित पते उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के श्रवण कर रहे हैं।

0: एक खकार अखर खखा, एक लकार लीजिए कहें लल्ला, एक सकार तो ससा, इउं खालसा अखर बनया है।
1: तीनों को पद खालसा किनो अर्थोचार,
0: तिना का पद है खालसा। तो इस तरह इन्हों का असि महाराज सच्चे पातशाह कहने अर्थ जिहड़ा है बना के तुहानू सुना दिता कि खा ल ते सा, ये तीन अखरां दे विच इन्ना कुछ छुपया होया कि जिहड़ा कोई बंदा समझ नहीं सकता। जिवें कहा सी खंजोगी लंघोग और ग्रहणे मांझ संग्रहणे मांझ, इहदा ये अखर विच किन्नी डूंघाई है। जां खंजोगी कहिंदे खा खालसा जोगी रूप होवेगा, ते खालसा जिहड़ा होवेगा लल्ले तों कहिंदे लंघोग भाव खालसा। दो चीजां हो गईयां, एक जोग होवेगा भोग होवेगा खालसे कोल, और संग्रहणे मांझ इकट्ठा करेगा खालसा नाम। इस तरह ही सतगुरु महाराज कहिंदे ने इन्हां तुकां दे विच पद खालसा दे अखर अखर ते अर्थ कीते जिहड़े ने ना, उह इस ढंग दे नाल कीते हन। तो जिवें कहिंदे ने जो है खंजोगी, तो जोगी हो गया लंघ भोग मैं जां संग्रहणे मांझ, तां इस तरह कहिंदे ने खालसा जोग ते भोग दोहां नूं मिल के विचरेगा। ते खंग दा अर्थ हुंदा नभ, नभ तो मुराद हुंदा चिदाकाश। लंग भोग दा अर्थ हुंदा लंपट तो पाव, इह संसार दे जिहड़े भोग दे अर्थ इस प्रकार कहना। संग्रहण दा अर्थ है इकट्ठ करना, मेल करना। इस तरीके नाल इह सारियां चीजां खालसे दे तीन अखरां विच ही ने। महाराज कहिंदे जे कोई इन्हां नूं विचार करे खा ते ला ते सा, ये तिना विचों ही सारा कुछ ही निकल आउंदा है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने खालस अखर नूं समझना सारयां दे वस दी गल नहीं, पर असी तुहानूं कुछ अर्थ इहदे करके दसे हन।
1: चौपाई इमकै तूसन भए गुसाई,
0: इउं कह के महाराज सच्चे पातशाह जी फेर नहीं बोले, फिर चुप हो गए।
1: देखत सब दिस दृष्ट चलाए,
0: देखदिया सारे पासे महाराज ने अपनी दृष्टि संगत ते चलाई है।
1: लको सुभाए खालसे गुर को,
0: कहने सुभाव की कहने जो खालसा है ए गुरु रूप है अते गुरु खालसा है।
1: बुझो पुन जो संसे उर को,
0: फिर महाराज कहने चंगा खालसा जी हुण जेड़ा संसा सी तुहानू वो तुहाडा दूर करता, होर कोई कोई शंका होवे कहिंदे उह भी पुछ लो।
1: श्री प्रभु किम वरतै वरतारा,
0: महाराज ये दसो ये जिहड़ा वरतारा आप जी ने कहा है ये किवें वरतेगा।
1: किम भाणा होवे करतारा,
0: ये वाहेगुरु दा भाणा किवें होवेगा सानू कुछ जरूर दस के जाओ जी।
1: समय कलो को होए,
0: कलयुग दे समय विच किवें किवें होवेगा वरतारा वरतेगा।
1: वदै राज नरप कहीं अनसोए,
0: सो इस करके आप जी ने कहा कि राज वधेगा, राजा खालसा राज करेगा, ये राजे बनणगे।
1: हृदय खालसे लालस लहो,
0: खालसे दे हृदय विच ये लालसा है जी।
1: भूत भविखत की गत कहो,
0: आउण वाले समय दे कुछ बचन सानू जरूर सुनाओ।
1: इम सुन सिंघन की अरदास,
0: इउं अरदास बेनती जदों सिंघां ने कीती कि महाराज सानू दसो आउण वाला समा।
1: श्री कलंगी धर किन प्रकाश,
0: कलंगी धर महाराज जी ने फिर कुछ बचन खालसे दे बेनती करन तों इउं प्रकाश प्रगट कीते।
1: 4,32,000,
0: महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे इह 4,32,000
1: कलू आर बल करी उचारा,
0: कहने भाई वेदा शास्त्रा च उम्र कलयुग दी इन्नी लिखी है 4,32,000 साल कुल उम्र है, हले 5,000 साल ही लंघिया कलयुग, 5,000 साल च गेड़े खवाते अपने सारयां दे, तां हुण गाहां हले किवें लंघेगा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह खालसा पुछ रहा जी, ये खालसा जी पुछदे ने सारे भी ये बनूगा की साडा।
1: जिसमें संत होए ब्रह्म ज्ञानी,
0: महाराज कहने ऐसी नहीं गल है जिदे विच बहुत सारे संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख होणगे।
1: सगरे दोख करें जोहाने,
0: जिहड़े रब दे बंदे होणगे रब दे प्यारे होणगे उह सारे जिहड़े दोष ने दूर करनगे लोकां दे।
1: दोहरा ਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇੱਕ ਬਰਕ।
0: ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ

3 बजे 2:30 बजे के करीब 3 घंटे पहला सूरज चढ़न तो पहर रात होंगी या समय बद करिए 6 तो 9 सवेरे पहला पहर बन गया 9 तो 12 2 पहर कहने जिन्हों 12 तो 3 तीजा पहर हो गया 3 तो 6 चौथा पहर ये दिन दे पहर बने इसे तरह रात दे तो इनू जेड़ा है पहर रात रही कहते ने पहर रात रही 3 घंटे रात रही हो जो 2:30 बजे 3 बजे के करीब सर्दियां चलो 3 बजे हो गए गर्मियां 2:30 बजे हो गए इन्ना क समा तो परिपक्वता नाल निभावे इशनान करे फिर सुचम रखे संजम

वेद शास्त्र सिमरतियां धारण करते हैं। इसे तरह सिख लई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सारा कुछ ही सार तत् है, रिड़क के सब कुछ सामने रख दिता। यह सारे तो श्रोमणी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के शब्द पंगतियां विच जो सिद्धांत है, जो उपदेश है,

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागै।
0: होर जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वो सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब

0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना कि नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तो भी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे हैं। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना, उन्होंने जवाब देने ने, उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच इह गल इस तरह नहीं है, इह गल इस तरह है। कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार नाल, दसना करिए पवित्र गज के आख।

0: धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, खीर निध हुंदा खीर समुंदर। तुहाडा जिहड़ा जस है वह तो हुण खीर समुंदर तो भी अगे लंघ चुकिया है।
1: कीरत तिहारी तुम्हें कह के संदेश जो,
0: सो तुहाडी जिहड़ी कीर्ति है यह मैं किवें कर सकदा? तुहाडी कीर्ति तो बहुत असीं किवें कह सकदे आ? तुहाडा तो जस पहला ही इन्ना वड्डा है, इन्नी दूर जा चुकिया है कि तुहाडा खीर समुंदरों भी पार जिहड़ी कीर्ति लंघ चुकी है। सो इस करके ये कवि तुहानू तुहाडा जस कहण लई तुहाडे पास आया है संदेशा लै के मेरा, तो इहनू तुसीं माण आदर बख्शना।
1: जो भई सुन प्रसन्न कलगी तर है के राख्यो निट मान बो कह के।
0: भाई अमृत राय नू महाराज ने बड़ा सत्कार दिता, अपने कोल बड़ा माण आदर सरकार दे के पक्का ही रख लिया।
1: रोज दयो कर दरब खनेरा,
0: रोज इनू हुण बहुते पैसे ला दिते कि बहुत माया, इतनी माया रोज इनू मिलनी है, जां हर रोज इनू 50 रुपए मिलने।

0: सारे कार्ज बन जाते हैं, हरेक काम बन जाता है, पर आप पुठिया कामों में टाइम लाने ज्यादा तैयार रहने, सीधे काम जे कि पच्ची पाठ करने फिर आप घबरा जाने। नहीं जे आप गुरां तो अरदास करके आगा ले लीए ना, सतगुरु बड़ी कृपा करते हैं, जी तो गुरां ने पाठ करवाने ने वो तो करवा ही लेने ने। इस करके कोशिश करो ज्यादा तो ज्यादा जे बाणी पढ़ी जाए और शुद्ध पढ़ी जाए, मर्यादा रख के पढ़ी जाए, तो सतगुरु बहुता फल देंदे हन।
1: मानसी अक्षर पंची अक्षर बाचत दे सिमर जिन रिद धर,
0: जिन्हां ने ए मानसी तो मतलब है कि मन बांछित फल देण वाला है, मन नाल जपण वाला है। पहले जिहड़े अक्षर ने ना 25 उन्हां नूं वचन करदे ने कि भाव एक ओंकार नूं एक गिण के, इसे प्रकार सह भंग तक 25 अक्षर बनते ने, ते गुरप्रसाद तक संपूर्ण हो जाते जाके। कहिंदे जिन्हां ने अपने मन दे अंदर इहनूं धारण करके जपिया है ना, जिन्हां जिन्हां ने भी जाप किया है, उन्हां दे सारे जिन्ने मन बांछित फल ने, अज दे युग विच ये दो गल्लां ने, मूल मंत्र कित्थों तक है, कोई कहिंदा इत्थों तक, कोई इत्थों तक है, पर इन्हां दोनों नूं खड़े करके पुछो तू कदे मूल मंत्र का जाप भी किया, रौला पाउण नूं तुसीं सारे जाने रौला बड़ा पाउणगे, इत्थों तक पाठ है, वह कहिंदा इत्थों तक है, फिर दोनों ने अपने डांग छोटे कढ लैंदे ने। बस यही सीखी है, दोनों नूं अकल नहीं है, वह जिथे तक जपना जपी जाओ, कला एक ओंकार ही कही जाओ तां भी प्रकाश हो जांदा, कला वाहिगुरु कही तां प्रकाश हो जांदा। गल तां जपण दी है, जपिया कहिंदे हैं थोड़े चों मूल मंत्र दियां किन्नियां माला रोज करदे हो, कहिंदे वह तां नहीं असीं करदे, पर मूल मंत्र इत्थे तक है, बस असीं तां इन्नी गल जाणदे हां। तो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जिहड़े मूल मंत्र है ना, ये जो अक्षर ने इन्हां नूं ध्यान दे नाल कोई इन्हां दा जाप करे, कला एक ओंकार सतनाम ही कही जावे ना, सतगुरु कहिंदे तां भी यह भला कर दिंदा है, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु कहे तां भी भला कर दिंदा है। इस करके तुसीं जपो सही, जिन्ना कि थोड़ा मन लगता है, वैसे तो आपां नूं हुण पंजां प्यारे ने दे दिता ना मूल मंत्र, जिन्ना जिन्हों जिथों तक मिलिया, जिन्हों पंज प्यारे ने जिन्ना जिन्ना दे दिता उन्ना ही जपी जाओ, रौला ना पाओ, विवाद ना करो, इस करके झगड़ा ना करो, प्यार ना रहो आपस दे विच।
1: इसको अर्थ करो गुर दयाल इत सिखन के कर नियाल,
0: दयाल सतगुरु ने अर्थ किया है कादे लई, सिखां नूं निहाल करन वास्ते।
1: वरन पची अजप्पा जपै कै रसना रस्ते मन रपै,
0: महाराज कह रहे इन्हां 25 अखरां दा जाप जाता अजप्पा अंदर ही जपे, गुप्त जपे, कै तो अर्थ हुंदा जा, रसना रस्ते मन रपै, जा रसना दे नाल जपे, बोल बोल के प्यार नाल जपे, अपने नाम रंग विच मन नूं रंगे, कुछ तो करो। कहते इस करके सतगुरु महाराज कहते ने रसना नाल बोल बोल के जप लो, कन्ना नाल सुनी जाओ, जा फिर चिंतन करना अंदर बिना बोलिया, सारे ध्यान हटा के, औखा है जो अंदर अंदर जपना औखा लगता पहला, इस करके मूह दे नाल बोल के जाप करो।
1: तिस्ते दुखन दुख रुजतीन बात पित कफ करता हीन,
0: हुण इहदे नाल जिहड़ा ना मूल मंत्र दा पाठ करन दे नाल किहड़े किहड़े उहदे नाल दुख, तीन तीन तीन नौ चीजां खत्म होईयां इत्थे, किहड़ियां किहड़ियां? इक तां दुखन मन बाणी शरीर करके जिहड़े दोष ने मुकदे ने इक तां, ते इक जिहड़ा है दुख दूर हुंदे ने उह हुंदे ने रोज, तीन ਉਹ ਬਾਏ ਪਿੱਤ ਕਫ ਅਥਵਾ ਰੋਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਰੋਜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਉਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਤੇ ਉਪਾਧੀ, ਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਆਸਰੇ ਨੇ ਗਮ ਚਿੰਤਾ ਸੋਗ ਫਿਕਰ, ਵਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫੋੜਾ ਫਿਣਸੀ ਬੁਖਾਰ ਆਦਿਕ, ਉਪਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ ਪੀੜਾ ਡਾਂਗ ਸੁੱਟ ਆਦਿਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਤ ਪਿੱਤ ਤੇ ਕਫ,

0: चलन समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे अथवा कई

0: अत्यंत ही भैड़ा सुभाव पलटन वास्ते असे भूत प्रेत डाकनिया हुंदियां ने जिहड़ियां अथवा डीठ हुंदी नजर लगनी ये मसले आम तौर ते दबा दिते जांदे ने वी इह कोई चीजा नहीं हुंदियां इह फालतू गल्लां ने पर फिर लोग उधर नूं क्यों भजदे ने सो ऐसियां चीजां दा प्रभाव गुरबाणी अंदर गुरां ने मन्निया है जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी कसवटी ते सब चीजां आ जांदियां ने फिर मुनकर नहीं होना चाहीदा समकां उहनां दा डट के आपां नूं मुकाबला करना चाहीदा गुरबाणी दे नाल ना कि इधर उधर भटकना चाहिदा महाराज ने इत्थे जपजी साहब दा इसे करके महात्म दस्सिया
1: मन जीतन रण मैं धरा राज काज सुख
2: राज काज दे विच मैदान जंग जाण दे विच राजनीति दे विच बाणी तां हर जगह ही सहायता करदी है जिहड़ा मर्जी महाराज जी तों आपां मंग लईए
1: मिलने गिलने बंद मैं राज योग उत्साई
2: बंद मैं बंद हुंदा रिश्तेदार रिश्तेदारां नूं मिलना गिलना वो तो आपां नूं पता ही है कई चीजां दा भी जदों बरात आउंदी है उदों शब्द पढ़दे हम घर साजने आए बाणी ही पढ़दे हैं आनंद कारजां विच फिर लावां दा पाठ पहला कीर्तन हुंदा है महाराज कहिंदे जपजी साहब भी पढ़िया करो जपजी साहब दा पाठ जिहड़ा है ये पढ़ना रिश्तेदारी च मिल जाना राजयोग दे विच कहण तो भाव कि एक चिंता मणी हुंदी है चिंता दूर करदी है एक काम तेन गऊ है उहदे कोल कोई इच्छा कर लो पूरी करदी है एक कल्प ब्रिछ है पर सतगुरु ने कहा कि इच्छा पूरी

0: मंत्र जंत्र कलमाए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के विच एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत

0: संगति रहा हुआ। मगर असि किधर मत ये तीन चीजा चुको साध गुरु ग्रंथ साहब का 300 साल मेरे सतगुरु गरीब नवाज का आप जी बना रहे। मैं इना भजन आप जी ने करना चाहना भी जेडे आप कहने की इस दिन गुरगद्दी दिती गुरगद्दी समझते हो थोड़ा जा हम सचेत हो जाओ आप 5 मिनट भजन करने गुरगद्दी किन्ने नहीं पा रहे हो तो कहना अस पहलो तो यह गुरु आ पहले जमने जी जो सिद्धा ने पूछा शब्द गुरु तीसरे जामे च आख्या जी गुरु कौन आ कहिंदे वाह बाणी निरंकार है बाणी गुरु आ चौथे जामे च पुछा जी गुरु कौन आ कहिंदे बाणी गुरु पंजवे आख्या तुर की बाणी कमाल की गल असी एक रिपीट की श्राद्ध बजन है एक श्राद्ध बजन श्राद्ध करने आप बाजना आए असी 14वीं 13वीं का श्राद्ध बाबे नानक का भी करता आखो वाहिगुरु आ दिल्ली दे हुण लोकी जागरूक होए ने विद्वाना रौला पाया नहीं तो नानक प्यो जिधर आखरी श्राद्ध हुंदा सी इश्तिहारा दे उत्ते लिखिया हुंदा सी 19 तरीक नूं बाबे नानक दा श्राद्ध आखो वाहिगुरु लक सिधा करो 2 मिनट लई बाबे ते बाबा नानक ते मरिया ही नहीं बाबा नानक ते पहले जामे चो उठ के दूसरे च चले गया दूसरे चो तीसरे चो चौथे चौथे चो 95वें 95वें चो 6वें 6वें तो 7वें 7वें तो 8वें 8वें तो 9वें 9वें तो 10वें फिर नानक लीन भयो ओ 9वें तो यात्रा करके गोविंद विच भेद हो गया जिंदा जागदा बाबा नानक बैठा है गुरु ग्रंथ साहब ते श्राद्ध किन्हां दे करी दे जिंदिया के मरिया दे अजे सानू ए भी पता ना लगा असी बाबे नानक दे भी श्राद्ध करी है आ भी गल असी रिपीट करी जाने आखो वाहिगुरु आ भी गल असी रिपीट करी जाने के 300 साल हो गए जो गुरु
1: सजून ना आखियन पशु ढोर गवार पशु ढोर गवार जना सतगुर पुरख ना सेवे हो शब्द ना कीतो विचार शब्द ना कीतो विचार नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो शाह चाहे नमो महा माहे नमो शाह शाहे नमो महामाहे वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह राजवन क्या खोजी वाह

0: सतगुरु कहते कर हर ट माला टिंड प्रो ध्यान दो जी जग दिन एकाग्रता बख्शियो कहते आवास इन्हों बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरू गलिका करो
1: वाहिगुरू
0: खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नू जिहड़ी वगदी सी उहनू कहिंदे माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनू कहिंदे टिंडा उहनू टिंडा कहिंदे कर हर ट एक खूह बना आ जे सवास ने तेरे इना नू माला बना के माल बना के एक एक सवास नू टिंडा बना महाराज इस माल नू खिचे कौन एकाग्रता बख्शे इस माल नू खूह आए नू खिचे कौन कहते इस पीतर मन योग इस पीतर बलदा की जगह से इन खिंचन किनू जो उच्चा कौन किनू जो मन बेच जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दियां माला टिंडा खिंचन लई मन बलद बनाओ तो मन तो साडा सिमरन करदिया भी दौड़ता रहिंदा है साहब कहते ने तू मन जोड़ के इना टिंडा खिंच अगे जाके कहते अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्होंने पता है एक छोटिया छोटिया मटा पा के खेत दे विच की पा दी दे खेतीबाड़ी करते तुम पता पिंड वाले खेतीबाड़ी करने वाले पता क्यारे पा दी साहब कहते ने अंदरों मन नू जो के आई सवासा की पिंडा की माला ए मन नू जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे तो मैं धन गुरु ग्रंथ साहब पिता जी पूछा महाराज शरीर से कहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री कद के बोलो सतनाम महाराज उसे खेतों में क्यारे होंगे इतने क्यारे कहड़े कहते अखा नाम जपन वाले दिया अमृत ना भर दिंदियां अंदरों आनर के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पे आखो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पे ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पैंदा है फिर आखिया महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत भर जी गल कर लगता वा फिर कहने फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपन वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपन वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नू जो इस सवासा की माला बना मगर यह जो बरतना होया जे मन नू तू ना विच जोता सिमरन विच मन नू ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्यो अमृत आना नहीं ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कुछ नहीं मन नू विच जोना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओहो तो गज के बोलो ना तो

0: आनंदपुर साहब एक किला है तारागढ़ साहब तुहाडे चो किसे देखिया होगा बहुत घट संगत जांदियां उधरले पासे नूं पर भारती तां ही नूं तारागढ़ जगह महाराज का असला खाना सी पंजवां किला जिथे असला रखते सी गुरु गोबिंद सिंह उस तारागढ़ साहब कहिंदे ने इतिहास विच कहा कि इत्थे 500 ब्रह्म ज्ञानी रहिंदे सी जिन्हां दा लंगर गुरु गोबिंद सिंह साहब पिता जी आप सिर ते टोकरी चुक के हाथ च दात दी बाल्टी लैके रोज जांदे सी लंगर छकाउण ब्रह्म ज्ञानी आखो
1: वाहिगुरु
0: एक दिन गए ते पता नहीं केड़ी मौज विच आए सी लक्ष सीधा करो एक बार समा थोड़ा लगा पता नहीं केड़ी मौज विच आए सी आखो वाहिगुरु सारी ब्रह्म ज्ञानियां ने रल के आख्या सतगुरु तुसी कहिंदे हो वाहिगुरु जो मंत्र दा जाप करना चाहिदा सानू तुहाडी कृपा नाल बहुत ज्ञान हो चुकिया मगर असी एक बार तुहाडी रसना तो वाहिगुरु गुरु मंत्र दा जाप सुनना चाहुंदे तुसी अगे अगे करो असी 500 पिछे पिछे मैं तो नहीं कर सकता मैं तो ओहदे चरणां दा सेवक हां मेर मैं तां किथे कलगीधर पातशाह किथे एक बार भाई नंद लाल साहब ने पुछया महाराज रोटी खांद्या खांद्या गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक कुत्ते नूं इतना बुरकी पाई ते भाई नंद लाल साहब ने हाथ जोड़ के आख्या सतगुरु एक कुत्ता इधर भी बैठा वो आशको गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह साहब आशको उन्हें आख्या एक कुत्ता इधर भी बैठा गुरु गोबिंद सिंह साहब कहने लगे भाई नंद लाल साहब मेनु पता बैठा है जिदन कुत्ता बन जाएगा गुरकी घर कुत्ता बनना ही बड़ा मुश्किल बनना तो छड़ दे गो सी वह प्रगटे मर्द बरेआम मैं इतिहास पढ़िया है कि उस जगह ते कलगीधर पातशाह पिता जी अगे अगे वाहिगुरु याद करवाउंदे ने ते आख्या सी कुछ समा करांगे सवेरे अमृत वेले तो सतगुरु गरीब नवाज पातशाह शाम दे 4 बजे तक एक रस वाहिगुरु गुरु मंत्र दा जाप करदे ने ते 500 ब्रह्म ज्ञानी तुसी सोचो ते सही ओ माहौल की है कई बेको बचन जरा ना आखो सतनाम श्री वाहिगुरु मिलबे की महिमा करना ना सख जो शब्द सुरत मिलते है ना वो जरा आनंद है मैं हाथ जोड़ के आप जी बेनती करा वो किसी किताब लिखा नहीं है ना ना मिलबे की महिमा जिथे शब्द ते सुरत जाके एक जरा आनंद बढ़ता है ना उस आनंद को कलम ना लिख नहीं सकता महाराज पातशाह कहते हैं कहो कैसे अनुबान कहो कैसे उथो का अनुमान कितना लाया सकता है कहते ने कहीं पे को शोभा नहीं ओते देखा ही उथे ते कोई जीव आत्मा तच पकाई उथे पाए नानक गया गया गया उस जगह ते सुरत गया पता लगता है कि ओ आनंद की है गुरु तेग बहादुर महाराज अगे अगे कह रहे ने पांच सिख पिछे पिछे कह रहे ने ते जेड़े भूत प्रेता दी गल करते सी उथे कोई आवाज नहीं सारे ब्रह्मांड विचों एक कोई

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।